प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु आप हाथ दे मुहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब

जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै।

उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकर कैठा। शिग्रे श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे आस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जब

दुष्ट अरिष्ट टरह तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु ताके ताप तनक मह हरिहु रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब हुई दुष्ट छाह छवै।

नानक सुनहु संतो शब्द तरु प्यारु, साचा नाम मेरा आधारु। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौसे नाम हर कह लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित

ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधावै धाए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देग के अंडट कीता जिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हे शीश दित्ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चिते आवे चिते आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत तो देख तेग पते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब की सहाये खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान केश दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दे रखे आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सहाई दतार जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां नूं पंथ तों विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणियां दे मान सतगुरु नितानियां दे तान सतगुरु नियोटियां दे ओट गुरु गरीब नवाज धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी का पावन पवित्र फरमान है तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच बखाना बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मान है प्रतख गुरु निस्तारे दी मां वाक अनुसार साहिब सतगुरु धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी के पावन पवित्र पहले प्रकाश पुरब दियां खुशियां दे अंदर गरीब नवाज अमृत वेले तो आप जी के दर घर अंदर बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां आप जी दियां रहमतां प्राप्त कीतियां गरीब नवाज सच्चे पातशाह जीओ इस वक्त संध्या दा समा जान के सो दर रह रासै बाणी दे पाठ कीते गए गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी अते आप जी के पावन पवित्र पहले प्रकाश पुरब की खुशी दे अंदर जो कल रोज तो 31 राग दरबार गुरमत समागम प्रारंभ होए हन गरीब नवाज बेअंत गुरु घरों दरों सरों वरसाए हुए रागी सिंघां ने कीर्तनीय सिंघां ने आप जी की अमृतमई बाणी का राग बद गायन किया सतगुरु जी आप जी की पावन पवित्र बाणी का कीर्तन करद्या सो दार रह रास है बाणी दे पाठ करद्या आप जी के दसरिया पासों हुई बेअंत बेअंत भुला आप जी ने मुआफ कर देनिया अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना चढ़ती कला बख्शिश करके नवाजना जियो बेअंत संगतां ने हाजरियां भरिया भेटां अर्पण कीतियां बेअंत संगतां ने मीडिया के माध्यम राही हाजरियां भरिया सेवावां भेजियां समूह संगत दियां हाजरियां भेटावां दर प्रवान करनियां दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना किरत कमाइया विच बरकतां पाउणियां घरां विच सुख वरताउणी सच्चे पातशाह जी कृपा करनी रहमतां करनियां आप जी के दर घर दे सेवादार सरदार महिंदर सिंह जी बाजवा सच्चे पातशाह जी तिन्हां दे समूह परिवार वल्लों सिंघां वल्लों अरदास बेनती है आप जी बाजवा साहिब नूं देह रोगता ती दात बख्शिश करो चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजो गरीब नवाज कृपा करो पावन पवित्र हुक्मनामा साहिब बख्शिश करके नवाजो जी आप जी के पावन हजूर पंचामृत कड़ा प्रसादी देग हाजर है दर प्रवान होवे
ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੀਮ ਦੇ ਗੁਰਪਾਰ ਉਤਾਰਨ।

राग आसा काफी, अरोह दे विच आसा, अवरोह दे विच राग काफी। मिश्रित राग है आसा काफी गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, पंचम पातशाह दा शब्द है। रहा उहदी पंक्ति है, माण निमाणे तू धणी तेरा परवासा, बिन साचे अनटेक है सो जाणो काचा। आओ इस राग दा, इस गुरु शब्द दा, इस राग विच गायन करिए जी।

कृपया विश्वास समझिए। रात तुखारी दे शब्द है जी निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। ये बंदिश प्रिंसीपल सुखवंत सिंह उन्हां दी है, मेरे बड़े प्यारे मित्र ने। वो रागां दे विच बड़ियां सरल ते संगती रीतां उन्होंने बहुत बनाईया ने। आप जी सारे नूं बेनती है, सारे ही कृपा करो, बड़ी सिंपल रीत।

है तन है तन है गुरु अमरदास साहेब तन है तन है तन है तन गुरु अमरदास तन है तन है।

तन है तन है गुरु अर्जन देव जी तन है तन है तन है तन है तन है तन है गुरु हर गोविंद साहेब जी तन है तन है तन है तन है गुरु हर गोविंद साहेब जी तन है तन है तन है

तन है तन है गुरु तेग बहादुर तन है तन है तन है तन है गुरु गोविंद सिंह जी तन है तन है तन है तन है गुरु ग्रंथ साहिब जी तन है तन है तन है तन है प्यार पंथ खालसा तन है तन है तन है तन है प्यारी साध संगत जी तन है तन है तन है तन है तेरी

0: अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ
1: कल क्लेश तन माहे मिटावो
0: सिमरौ जास विश्वम्बर एकै
1: नाम जपत अगणत अनेकै
0: वेद पुराण सिमरत सो दाख्यर
1: किने राम नाम एक आखर
0: किनका एक जस जी बसावै
1: ताकि महिमा गनी न आवै
0: कांखी एकै दर्श तुहारो
1: नानक उन संग मोहे उदारो
0: सुख मने सुख अमृत प्रभ नाम
1: भगत जना कै मन विश्राम रहा
0: प्रभ सिमरन गर्भ न बस
1: कै सिमरन दुख जम न सै
0: प्रभ कै सिमरन काल पर हरै
1: प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै
0: प्रभ सिमरत कछु बिघन न लागै
1: प्रभ कै सिमरन अंधन जागै
0: प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै
1: प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभ का सिमरन साध कै संग
1: सर्व निधान नानक हर रंग
0: प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नाउ निद
1: प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत्वद
0: प्रभ कै सिमरन जप तत् पूजा
1: प्रभु कै सिमरन विनसै दूजा
0: प्रभु कै सिमरन तीर्थ इस नानी
1: प्रभु कै सिमरन दरगह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होए सो भला
1: प्रभु कै सिमरन सुफल फला
0: से सिमरै जिन आप सिमराए
1: नानक ता कै लागो भाए
0: प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा
1: प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा
0: प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै
1: प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझै
0: प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा
1: प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
0: प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए
1: अमृत नाम हृदय माहे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना
1: नानक जन का दासन दसना
0: प्रभु को सिमरै से धनवंते
1: प्रभु को सिमरै से पतवंते
0: प्रभु को सिमरै से जन परवान
1: प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान
0: प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे
1: प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरै से सुखवासी
1: प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
1: नानक जन की मंगर वाला
0: प्रभु को सिमरै से पर उपकारी
1: प्रभु को सिमरह तिन सर्व निहारी
0: प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे
1: प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता
1: प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता
0: प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे
1: प्रभु को सिमरह वसे हर नेरे
0: संत कृपा ते अन दिन जाग
1: नानक सिमरन पूरा भाग
0: प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे
1: प्रभु कै सिमरन कब हुन चूरे
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी
1: प्रभु कै सिमरन सहज समानी
0: प्रभु कै सिमरन निचल आसन
1: प्रभु कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार
1: सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
0: सिमरै से जन जिन को प्रभु माया
1: नानक तिन जन सरनी पया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
1: हर सिमरन नगवेद उपाय
0: हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते
1: हर सिमरन नीच चोह कुंट जाते
0: हर सिमरन धारी सब तरना
1: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन की ओ सगल अकारा
1: हर सिमरन में आप निरंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरु हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ
2: मात पिता सतमीत न पाई
0: मन उहा नाम तेरा संग सहाई
2: महा प्यान दू जमदल
0: तय केवल नाम संग तेरा चलै
2: मुश्किल होवे अत भारी
0: हर को नाम किन माहे उधारी
2: मन पुने जन करत नहीं तरे
0: हर को नाम कूट पाप पर हरै।

0: देखे सर्व टटोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल।
1: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान,
0: खट शास्त्र सिमरत वख्यान,
1: योग अभ्यास कर्म भ्रम क्रिया,
0: सगल त्याग मन मदे फिरिया,
1: अनेक प्रकार किए बहु जतना,
0: पूर्ण दान होमे बहु रतना,
1: सीखटाय होमे कर राती,
0: वर्त नेम करे बहु पाती,
1: नहीं दुल राम नाम विचार,
0: नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार,
1: नौ घट पृथ्वी ब्रज जीव,
0: महा उदास तपी सरथी वै,
1: अगन माहे हो मत प्राण,
0: असव है वर भूम दान,
1: कर्म कर भव आसन,
0: जैन मार्ग संयम अत साधन,
1: निमक निमक कर से कटावे,
0: कौ पी हम मैल न जावे,
1: के नाम संसर कुछ नाहे,
0: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे,
1: मन कामना तीरथ दे छुट,
0: गर्भ गुमान न मन ते हुटा,
1: सोच कर दिन स्वर रात,
0: मन की मैल न तन ते जात,
1: इस देही को बहु साधन कर,
0: मन ते कबहू न बिखिया टर, शुद्ध कहाँ होए काची पीत,
1: मनवर के नाम की महिमा ऊच,
0: नानक नाम उदरे पतत बहमूच,
1: बहुत स्यान जन का भव व्याप,
0: अनक जतन कर त्रिशन ना त्रप,
1: एक अनेक अगन नहीं बुझ,
0: कोट उपाव दरगह नहीं सिजय,
1: झूठ सुनाही उपयाल,
0: मोहे व्याप माया जाल,
1: अवर करतूत सगली जम डान,
0: गोविंद भजन बिन तिल नहीं मान,
1: का नाम जगत दुख जाए,
0: नानक बोले सहज सुभाए,
1: चार पदार्थ जेको मांगे,
0: साध जना की सेवा लागे,
1: जेको अपना दुख मिटावे,
0: हर हर नाम हृदय सद गावे,
1: जेको अपनी शोभा लोरे,
0: साध संग एहो मैं शोरे,
1: जेको जन्म मरण ते डरे,
0: साध जना की सरणी परे,
1: जिस जन को कल दस व्यासा,
0: नानक ताकै बल बल जासा,
1: सगल पुरख मैं पुरख प्रधान,
0: साध संग जाकै मिटाए अभिमान,
1: आपस को झुक जाने नीचा,
0: सो गनिय सब ते ऊंचा,
1: का मन है सगल किरीना,
0: हर हर नाम तिन कट कट चीना,
1: मन अपने ते बुरा मिटाना,
0: एक है सगल सृष्ट साजना,
1: सुख दुख जन सम दृष्टिता,
0: नानक पाप पुन नहीं लेपा,
1: नेर तन को तन तेरो नाव,
0: निथावे को नाव तेरा थाव,
1: निमाने को प्रभ तेरो मान,
0: सगल कटा को देव दान,
1: कन करव ना स्वामी,
0: सगल कटा के अंतर जमी,
1: अपनी गद में जन हो आते,
0: आपन संग आप प्रभ राते,
1: तुमरी उस्तत तुम ते होए,
0: नानक अवर न जान सकोए,
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म,
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म,
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया,
0: साध संग दुर्मत मल हिरिया,
1: उद्दम में उद्दम भला,
0: हर का नाम जप हो जी सदा,
1: सगल वाणी में अमृत वाणी,
0: हर को जस सुन रसन बखान।

0: पछे पावे
1: एक बस्त कारण बिखोट गवावे
0: एक बीना दे दस विहरले
1: औ मूड़ा कहो कहा करे
0: निष्ठा कर से नाई चारा
1: पाखो की जय सद नमस्कार
0: के मन लागा प्रभ मीठा
1: सर्व सुख ताहु मन बूठा
0: जिन अपना हुकुम मनाया
1: सर्व थोक नानक तिन पाया
0: अपनी दे रास
1: आप पीत बरतै।

0: जेहे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
1: तिस ठाकुर को रख मन माहे
0: जेहे प्रसाद सुगंध तन लावे
1: तिसको सिमरत परम गत पावे
0: जेहे प्रसाद बसह सुख मंदर
1: तिसे त्याहे सदा मन अंदर
0: जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पहर सिमरो तिस रसना
0: जेहे प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याहे त्यावन जोग
0: जेहे प्रसाद पाठ बटम बरहडावे
1: तिसे त्याग कत अवर लुभावे
0: जेहे प्रसाद सुख से सोई जय
1: मन आठ पहर ताका जा सुगा भी जय
0: जेहे प्रसाद तुझ सबको मन
1: मुख ताको जास रसन बखाना
0: जेहे प्रसाद तेरो रहता ता
1: मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म
0: रब जी जब दरगह मान बावे
1: नानक पत सेती घर जावे
0: जेहे प्रसाद आलोक गंचन देही
1: लिव लावो तिस राम स्नेही
0: जेहे प्रसाद राव ला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जेहे प्रसाद तेरे सगल सिदर ठाके
1: मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके
0: जेहे प्रसाद तुझको न पहुंचे
1: मन सास सास सिमरो प्रभ उचे
0: जेहे प्रसाद पाई दुर्लभ दे
1: नानक ताकि भगत करे
0: जे प्रसाद आपू खन बहरी जय
1: मान तिस सिमरत क्यों आलस की जय
0: जे प्रसाद हस्व अस जेहे प्रसाद अश्व हस्त सवारी
1: मान तिस प्रभ कौ कबहू ना बिसारी
0: जेहे प्रसाद भाग मिलख तना
1: राख परोए प्रभ अपने मना
0: जिन तेरी मन वंत बनाई
1: उठत बैठत साध तिसे त्याई
0: जो एक अलख
1: इहा उहा नानक तेरी रख
0: जेहे प्रसाद करे पुन बहुदान
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
0: जेहे प्रसाद तू आजार व्यवहारी
1: तिस प्रभ कौ सास सास चितारी
0: जेहे प्रसाद तेरे सुंदर रूप
1: सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप
0: जेहे प्रसाद तेरी निकी जात
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
0: जेहे प्रसाद तेरी बत रहे
1: गुर प्रसाद नानक जस का है
0: जेहे प्रसाद सुनह करन नाद
1: जेहे प्रसाद पेखै बिस्मात
0: जेहे प्रसाद बोल है अमृत रसना
1: जेहे प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जेहे प्रसाद हस्त कर चल है
1: जेहे प्रसाद संपूर्ण फल है
0: जेहे प्रसाद परम गत पाव है
1: जेहे प्रसाद सुख सहज समावै
0: ऐसा प्रभ त्याग वर्गत लाग हो
1: गुर प्रसाद नानक मन जाग हो
0: जेहे प्रसाद तू प्रगट संसार
1: इस प्रभ को मूल न मन हो विसार
0: जेहे प्रसाद तेरा प्रताप
1: रे मन मूड तू ताको जाप
0: जेहे प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: जिसे जान मन सदा हजूरे
0: जेहे प्रसाद तुम पावह साच
1: रे मन मेरे तू तास्यो राच
0: जेहे प्रसाद सबकी गत होए
1: नानक जाप जप जप सोए
0: आप जपाए जप सुनाओ
1: आप गावाए सुहर गुण गाओ
0: प्रभ कृपा ते होए प्रगास
1: प्रभु दया ते कमल विगास
0: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए
1: प्रभ दया ते मत उत्तम होए
0: सर्व निदान प्रभ तेरी मया
1: आपो कछु न किन्हु लया
0: जित जित लाओ तित लगे हर नाथ
1: नानक इन कै कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की आचार्य कथा अष्टपदी साध कह संग मुख उज्जल होत
0: साध संग मल सगली खोत
1: साध कह संग मिठाय अभिमान
0: साध कह संग प्रगय सुज्ञान
1: साध कह संग बुझय प्रभ नेरा
0: साध संग सोत नवेरा
1: साध कह संग पाए नाम रतन
0: साध के संग कुपर जतन
1: साध की महिमा वर्णय कौन प्राणी
0: नानक साध की शोभा ब्रह्माय समानी
1: साध कह संग अगोचर मिलै
0: साध के संग सदा प्रफुल्लै
1: साध कह संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पंचा
1: साध संग होए सब की रेन
0: साध कह संग मनोहर बैन
1: साध कह संग न कत हूं तावे
0: साध संग स्थित मन पावे
1: साध कह संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभु सब प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साध कह संग महापुनीत
1: साध संग के सेव नहीं बैर
0: साध कह संग न बिगा बैर
1: साध कह संग नाही को मंदा
0: साध संग जाने वर्मानंदा
1: साध कह संग नाही हौ ताप
0: साध कह संग तुझे सब आप
1: आपे जाने साध बढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साध कै संग न कबहू तावै
0: साध कै संग सदा सुख पावै
1: साध संग बसत अगोचर लाहै
0: साधु कै संग अजर सहै
1: साध कै संग बसै थान ऊचै
0: साधु कै संग मैं पूछै
1: साध कै संग दृढ़ सब धर्म
0: साध कै संग केवल पार ब्रह्म
1: साध कै संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु कै कुर्बान
1: साध कै संग सब कुल उधार
0: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार
1: साधु कै संग सो धन पावै
0: निस्तन ते सब को वरसावै
1: साध संग धर्म राय करे।

0: साध कै संग नहीं काश काल
1: निहाल
0: साध कै संग कलूख तहर
1: साध कै संग नरक पर हर
0: साध कै संग इहा उहा सोहेला
1: साध संग विचर धर मेला
0: जो इच्छा सोई फल पावे
1: साध कै संग नृत्य जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद बस
1: नान गुजरे साध सुन
0: साध कै संग सुनो हर नाओ
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध कै संग न मन ते बिसरे
1: साध संग कर पर निस्तर
0: साध कै संग लगे प्रभ मीठा
1: साधु कै संग कर कर दीठा
0: साध संग पए आज्ञाकारी
1: साध संगत भई हमारी
0: साध कै संग मिटे सब रोग
1: नानक साध बेटे संयोग
0: साध की महिमा वेद न जाने
1: दीठा सुने देता बखियान
0: साध की उपमा ते हो गुण ते दूर
1: साध की उपमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का नाही अंत
1: साध की शोभा सदा बेअंत
0: साध की शोभा ऊंच।

0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जन
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुग जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदा

0: निम ठाकुर नम सुकार नानक हो अपरस सगल निसकार
1: ऐश्वरी मिथ्या नाही रसन परस
0: मन में प्रीत निरंजन दर्श
1: पार त्रय रूप न बेख्य नेत्र
0: साध की टहल संत संग हेत
1: करन न सुन गाऊ की निंदा
0: सब ते जाने आपस को मंदा
1: मोर प्रसाद लिखिया बर हर
0: मन की बाशना मन ते तर
1: इंद्री जित पंच दो ते रह
0: नानक कूट मध्य को ऐसा अपरस
1: मैं सुनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विसन की माया ते होए भिन्न
1: कर्म करत होवे नह कर्म
0: जिस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहु बल की इच्छा नहीं बच
0: केवल भगत कीर्तन संग रच
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप लडड़े अवरै नाम जपावे
0: नानक ओ वैष्णो परम गत पावे
1: भक्ति भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मन ते विनसै सगला परम
0: कर पूजै सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पाप मल खोवे
0: जिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल कर नित नीत
0: मन तन अर्पै विष्ण प्रीत
1: हर के चरण हृदय वसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: पंडित जो मन पर बुद्ध
0: राम नाम आत्म में सुद
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित कह उपदेश जग जीव
1: हर की कथा हृदय सावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद प्राण सिमृत बुझे मूल
0: सुखम में जाने असथूल
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जहु वरना मैं जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: साध संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उर तार
0: पास प्रेत मुगद पाथर को तार
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगद कित न भाई है तरम
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिस कै मन बार ब्रह्म का निवास
0: तिस का नाम सत रामदास
1: आदम राम दिस नदरी आया
0: दास दसंतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट

0: ऐसी जुगत नानक रामदास
1: राम की अज्ञात महताव
0: जीवन मुक्त सो कहाव
1: ऐसा हर्ग तैसा उस सोग
0: सदा आनंद तय नहीं बियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी सुमाटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिख खाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जोग तैसा जोगत
0: नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जित जित कर राख तैसा तिन नाओ
1: आपे करन करावन जोग
0: प्रभ पावे सोई फुन होग
1: बसरे वापो रंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रगास
0: पार ब्रह्म करता।

0: रचना प्रभु रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार बिहारी
0: कई कोट पय तीर्थवासी
1: कई कोट मन परमे उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट तपिसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान तार
1: कई कोट कब का विचारे
0: कई कोट नवतन नाम त्याव
1: नानक करते कांत न पावे
0: कई कोट पय अभिमानी
1: कई कोट अंधे ज्ञानी
0: कई कोट कीर्तन कठोर
1: कई कोट पिग आत्म ने को
0: कई कोट पर दर्ब को हिरा
1: कई कोट पर दुख ना करे
0: कई कोट माया शरम माहे
1: कई कोट परदेश परमाने
0: जित जित लावो तेत तेत लगना
1: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सेत जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कई कोट पात्र बिरखन बजाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंत्र
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट सियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव दानव इंद्र से छत्र
0: सगल समग्री अपने सूत धार
1: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे
0: कई कोट राजस तामस सातक
1: कई कोट वेद प्रांत मद सास
0: कई कोट किए रतन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चेर जीवे
1: कई कोट गिरी में स्वर जीवे
0: कई कोट जाख्य किन्नर पिशाच सब ते निरह सब हूँ ते दूर
1: नानक आप लिप्त्रया परपूर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरक सुन वासी
0: कई कोट जन्म जीव मरे
1: कई कोट भोजनी फिरे
0: कई कोट बैठत ही खाहे
1: कई कोट काले थक पाहे
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया में चित्त
0: जह जह पाणा तह तह राखे
1: नानक सब कुछ प्रभु के हस्ते
0: कई कोट पए बैरागी
1: नाम नाम संतन लागी
0: कई कोट प्रभ कौ खोजंते
1: आत्म में पार बमलहंते
0: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास
1: किनको मिलियो प्रभु नास
0: कई कोट मांगे सतसंग
1: पार बम लंगा रंग
0: जिनको हुए आप सो प्रसन्न
1: नानक ते जन सदा तन तन
0: कई कोट खानी अर्थ

0: त्यो ज्योति संग ज्योत समाना।
1: मिट गए गवन पाए विश्राम,
0: नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ करे
2: जिसके अंतर राज अभिमान।
0: सो नरक पाती होवत सुआन,
2: जो जन में जो बनवंत,
0: सो होवत बिष्टा का जंत।
2: आप

0: का रंग
1: साध संग बिन सह सब संग
0: चंचल मार गोविंद
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद
0: हर हर कर्म शरण हर कथा
1: हर दर कह नानक उजल मथा
0: बड़पागी ते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाहे
0: राम नाम जो करे विचार
1: से तनवंत गनी संसार
0: मन तन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछाने
1: इत उत कियो सोजी जाने
0: नाम संग जिसका मन मानिया
1: नानक तिने निरंजन जानिया
0: प्रसाद अपना बसुजे
1: किसकी जानो तृष्णा बुझे
0: सा संग हर जस कहत
1: सर्व रोग ते हर जन रहत।

0: संत जना मिल करो विचार,
1: एक सिमर नाम आधार,
0: अवर उपाव सब मीत बिसारो,
1: कर्ण गमन रिध में उतारो,
0: कर्ण कारण सो प्रभ समरथ,
1: दृढ़ कर गौ नाम अरुवात,
0: एहो तन संचो हो।

0: अब मोह कहां किस होवत परम
1: अपन खेल आप भरतीजा
0: नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल धनी
0: तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी
1: जब कहे हर अगम अपार
0: तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए
0: तब शिव साकत कहो कि तठाए
1: जब आप है आप अपनी ज्योत तरह
0: तब कवन डर कवन तक डर।

0: अष्टपति आप कथै आप सुनने हार
1: एक आप विसार
0: जाति सुपावै तां श्रेष्ठ उपाय
2: अपने मन लै समाए
0: तुम ते भिन्न नहीं किछ होए
2: अपन सूत सब

0: लखाना जाय पसारा
1: केवल सजा प्रथम संसारा
0: के रूप अनूप स्वरूपा
1: रंग भयो राव कहे भूपा
0: स्थित चकिनी
1: उत्पल खान बहर राज तेने
0: फूल राज।

0: गंग जाय सुरसना पावे।
1: सुने मोड़ जत लाए जत रुताय आवे।
0: दुख दर्द पौ नित न तिन नर के रहे।
1: हो जो जाके एक बार चौपाई को कहा चौपाई।
0: सत सैंस पनी

0: तू मन मेरे दुख सब सवारना
1: अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना
0: गला समरथ स्वामी सुख मनोह बसारे
1: कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
0: साहिबा क्या नहीं।

0: आनंद सदा करते कृपा करे प्यारिया
1: कर कृपा कलवक कटे ज्ञान अंजन सारिया
0: अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका सब सच्चे सवारिया
1: नानक हो आनंद है आनंद गुर से जानिया
0: जिस तू दे सोई जन पावे

की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुरदे अमरदास रामदास सह हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदावै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया। वंड छकिया देग चलाई, तेग वाही देखिया निट कीता। तिना प्यारियां सुचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्ना सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चिते आवे। चिते आवन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत। देख देख फते बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखां नूं सिक्खी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ, श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो। हे निमाणियां दे मान सतगुरु, नितानियां दे तान सतगुरु, नियोटियां दे ओट गुरु गरीब नवाज। धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी, आप जी की अपार कृपा बख्शिश मेहरामत दा सदका अज हफ्तावारी दीवान जो दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी आप जी के पावन पवित्र पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित अते गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवै चंदोवा उगवनो तै आत्मनो चौचक्की कियन लोवा दे मां वाकां।

0: राग प्रभाती विभास जो कि दो रागों का मिश्रण है, अवरोह दे विच राग प्रभाती, अवरोह दे विच राग विभास। राग प्रभाती
1: सा रे गा पा नी दा नी पा दा जा,
0: अवरोह दे विच विभास।

आजा जी, बेनती है भाई निर्मल सिंह जी खालसा नागपुरी जी, प्लीज आओ जी। भाई निर्मल सिंह जी उन्होंने साथी नाल बोले सो निहाल। भाई साहब बूटा सिंह जी, भाई शरणपाल सिंह जी चले गए, हम बेनती हैगी है भाई मनप्रीत सिंह जी उन्होंने जत्थे कि वह आन गए। भाई मनप्रीत सिंह उन्होंने नाल जिन्हें भी बच्चे स्टेज से उन्होंने साथ दिता है उन्होंने श्री अकाल। बच्चे तेजवीर सिंह बच्चे आ जाओ नाल, तेजवीर सिंह भाई साहब, भाई रघवीर सिंह जी श्री अकाल, गुरतेज सिंह बच्चा गुरतेज सिंह भाई मेहर सिंह अग्ञा अनूप सिंह हाँ जी, भाई बूटा सिंह जी ते भाई शनपाल सिंह जी सत श्री अकाल। बेनती है सारे नो कि एक इस पास असेंबल हो जाओ, एक ग्रुप फोटो सारे की इकट्ठी ले लेंगे, इस पास भी सारे आ जाओ जी। ते बेनती है बीबी सिमरत कौर जी उन्होंने जत्थे नो, भाई सुखमीत सिंह जी उन्होंने माता जी उन्होंने पिता जी ते बच्ची जैसमीन कौर सारे आओ जी।

बड़ भाग्य बीते दिन कल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का पोथी परमेश्वर का थान साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का पहला प्रकाश और बड़ी श्रद्धा भावना मनाया है। सतगुरु जी कृपा करन बख्शिश करन ए मनाए हुए पुरब साडे लेखे लग जान कि सानू भी जीवन जाच आ जाए जिदे करके मिलिया होया मनुखा जामा सफला हो सके। सो हुण आप जी दे सन्मुख आप जी नूं कीर्तन श्रवण करा रहे हन भाई सपाल सिंह जी, इन्हां पासों आप जी इलाही बाणी दे कीर्तन श्रवण करो, भुलां चुकां दी खिमा फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मैं वही गल आखी है। हे निरंकार जी, जो तुसा ने मैनू आखण लई आखी है, पाओ मेरी अपनी गल कोई नहीं है। तीसरे नानक श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज जी अमृत बाणी बारे फरमान करते हैं।

ब्रह्म तो ही बाणी उत्पन्न हो रही है ते मैं गुरमुखां नूं आख के सुना रहा हां। धन गुरु रामदास साहिब महाराज सोढ़ी सुल्तान कहिंदे दासन दा

अपनी सेवा प्रवान करनी जी भुला चुका की खिमा आओ भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी दे रागी जते पासों पावन पवित्र कीर्तन सरवण करिए जी बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।